0: प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne hamari

0: మీరింతవరకు స్తుతిమాల క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు విన్నారు. స్తుతిమాల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలు, సమాచార ప్రభాత్ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రలే.
1: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की. इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा. अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा. 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न. सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की. और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है.
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था.

0: का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
4: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
5: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
6: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब

0: बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर नेहरू पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games.

0: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी हैदराबाद के इस विशेष हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ जयदीप। श्रोताओं, नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रखना, उन्हें जागरूक करना और सही दिशा देना हम सब की सांझी जिम्मेदारी है। आज के कार्यक्रम का संदेश है से नो टू ड्रग्स, नशे को ना कहें। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ है ईगल फोर्स तेलंगाना के डायरेक्टर श्री संदीप कुमार शांडिल्य जी। उनसे बातचीत प्रस्तुत कर रही है सीमा कुमारी। तो आइए सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित किया है बल्कि परिवार और पूरे समाज पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। इसी विषय पर जागरूकता को बढ़ाने और नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रयासों को समझने के लिए हमारे साथ एक विशेष साक्षात्कार में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर ईगल फोर्स श्री संदीप शांडिल्य जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका शुक्रिया।
1: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज के समय में नशे की समस्या को किस रूप में देखा जाना चाहिए और यह समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
2: देखिए, नशे की समस्या को हमको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। नशे की समस्या कैसे बढ़ती जा रही है अभी सोसाइटी में, उसके दो तीन मुख्य कारण हैं।
1: जी।
2: नंबर एक मुख्य कारण है कि आजकल के बच्चे या थोड़े बड़े लोग वो ज्यादा सोशल मीडिया से प्रभावित होते हैं। एक ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस होने के बाद लोग पुराने हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उनको ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते। वो सोशल मीडिया पे बार बार जो भी खबर आती है या बार बार जो भी न्यूज आइटम देखते हैं उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नंबर दो जो बात कहने का है कि जो पहले एक कुटुंब में फैमिली का बड़े लोगों का जो कंट्रोल होता था, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करते थे, अब उतना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ नहीं व्यतीत करते और अपने बच्चे थोड़ा उनसे अलग हैं और उनका बात भी नहीं सुनते बिकॉज कि अब दोस्त जैसे बिहेव नहीं करते। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर आप ऐसा कहना चाहें तो थोड़ा उनके बीच में गैप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये भी एक बड़ा चिंता का बायस है। तीसरी बात जैसे है कि हमारा पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, लेक्चरर्स का, उनको स्टूडेंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ देखते थे, उनके ऊपर सिर उठा के देखते थे कि उनको फॉलो करेंगे। आजकल ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का इतना कि उनका भी इन्फ्लुएंस थोड़ा घटता जा रहा है। ये तीन चीजें हैं जिसके कारण आजकल की जो भी स्टूडेंट्स हैं या यूथ है वो थोड़ा जल्दी जल्दी खराब हो रहा है या उसको ठीक करने के मौके नहीं मिल पा रहे। ये तीन चीजें अगर हों, अच्छा हो, माँ बाप अपने बच्चों का बात सुने, उनके साथ टाइम व्यतीत करें, उनके साथ दोस्त के जैसा व्यवहार करें ताकि उनको कुछ भी तकलीफ हो रहा है वो सामने आके अपने माँ बाप से शेयर कर पाए, वो नंबर एक बात। नंबर दो बात कि आप सोशल मीडिया है ना, हर चीज के ऊपर कुछ लिमिटेशन रहता है कि मैं हर चीज में लिमिटेशन जरूरी है। मैं एक घंटा सोशल मीडिया देखता हूँ, दो घंटा सोशल मीडिया देखता हूँ, पर उससे ज्यादा हद नहीं करना। वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से हमारा दिमाग में भी थोड़ा गलत असर पड़ता है। और तीसरा, वी शुड ऑलवेज, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट से देखें एंड दे शुड कन्फाइड। अगर कुछ भी उनको तकलीफ है या कोई भी आप बताना चाहता है कि जो भी गलत कोई हरकत करता है बच्चा, तो वो भी अपने टीचर्स के अंदर भी कन्फाइड करने का एटमॉस्फियर रहना, वो टीचर्स को भी थोड़ा दोस्त के जैसे, थोड़ा टीचर के जैसे ऐसा व्यवहार करना। तो ये तीन चीजें अगर हम कंट्रोल किए तो डेफिनेटली हम तेलंगाना में नहीं पूरे इंडिया में नशा मुक्त भारत का 2-3 साल के अंदर हम ये जो भी ध्येय है या ये भी गोल है सेट करके उसको अचीव कर पाएंगे।
1: जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने संदीप जी। अभी जो आप बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन हम आपसे इस पे भी प्रकाश डलवाना चाहेंगे कि जो साथियों का दबाव होता है जिसको पीयर प्रेशर कहते हैं, खासकर कॉलेज के युवाओं में, उसका कितना नकारात्मक प्रभाव है नशे की लत को लेकर।
2: हाँ, ये भी बात बिल्कुल अच्छा बोला है कि ये भी बात देखी गई है कि कुछ लोग पीयर प्रेशर के बीच के दबाव में आके

0: गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि 3-4 बच्चे वो क्या करते हैं कि पहले क्लासेस बंक करते हैं, तो धीरे धीरे वो और बच्चों को क्लास में तोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्लास मत अटेंड करो, कहीं बाहर मिलेंगे और कहीं ऐसे सुनसान जगह में जाके सिगरेट पियेंगे, नहीं तो ई सिगरेट्स पियेंगे, नहीं तो खैनी गुटखा ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू करेंगे। और ये एक बात बिल्कुल देखी गई है कि जो बच्चे ऐसे गलत कंपनी में पढ़ के उनका गलत रास्ता या गलत कदम उठाना ये बिल्कुल निर्धारित है। अगर आपकी कंपनी में अच्छे पढ़ने लिखने वाले खेलने वाले लड़के या जो हैप्पी लड़के हैं ऐसे आपकी कंपनी में लोग रहेंगे तो आप भी ठीक ठाक रहेंगे, आप बिगड़ नहीं सकते। अगर आपकी कंपनी में ऐसे लोग आ गए जो सिगरेट पीते हैं, ई सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या शराब पीते हैं, तो धीरे धीरे आप भी थोड़े देर में उनके आप चंगुल में फंस जाएंगे। ये बिल्कुल एक फैक्ट बात है कि आपने जो बिल्कुल अच्छा फरमाया कि पीयर प्रेशर भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारे जो भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उन सबको मालूम पड़ता है कि ये लड़का अब गलत कंपनी में जा रहा है, इसके बिगड़ने का अंदेशा बढ़ गया है।
1: जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने। यानी यहाँ पे जो है वो पेरेंट्स यानी गार्जियंस की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और शिक्षकों का भी, कि वो मतलब बच्चों को पहचाने। अब हम बात करेंगे जो ईगल फोर्स है, उसके द्वारा जो नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, वो क्या-क्या है?
0: देखिए, ईगल फोर्स हमारा तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है कि जिसका ध्येय है कि तेलंगाना को नशा मुक्त बनाना। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो ईगल फोर्स को सौंप दी है। 2019 में एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक बड़ा सर्वे किया है। वो पूरे इंडिया में हर स्टेट एंड हर यूनियन टेरिटरी के सर्वे में उन्होंने आप क्या क्या ये ड्रग एब्यूज का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं उसमें वो कितना प्रचलित है राज्य में उनका उन्होंने वो किया है। सो ऐसा देखते हैं कि हेलुसिनोजेंस में तेलंगाना 2019 में नंबर 3 पे था। पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, जो इन ड्रग के इंजेक्शन लेते हैं, उस पे हम नंबर 5 में थे। देन जो कोकेन के यूजर्स है उसमें हम नंबर 5 में थे। तो ऐसा देखा जाए तो तेलंगाना का पॉपुलेशन 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ होगा। तो उसमें जो ड्रग्स के जो कंजम्पशन करते हैं, एडिक्ट्स हैं, वो 22.5 लाख उसमें एडिक्ट्स थे। तो ऐसा देखा जाए तो तेलंगाना में सिचुएशन भी ऐसा हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं है। ये तो पक्का बात कह सकते हैं कि 3.5 से 4 करोड़ हमारी जनसंख्या में, हाँ, 22.5 लाख आदमी ड्रग्स का एब्यूज कर रहे हैं, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इसमें हम गुटखा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे कंधों पे सरकार ने सौंप दी है।
1: जी
0: सबसे पहले ये से ड्रग्स का देखने का क्या है कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे को 18 साल से कम उम्र का बच्चा को सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ई सिगरेट्स का सेवन करना सख्त मना है, कानून की तरफ से मना है। अगर हम 18 साल की उम्र के बच्चे, इंटर सेकेंड ईयर तक के बच्चों को अगर हम रोक पाए कि आप कोई भी नशीली पदार्थ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर हम ये कर पाए तो ईगल फोर्स जानता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू कंट्रोल ड्रग्स इन दी सोसाइटी। यही बच्चे जो 18 साल की उम्र से पहले जो सिगरेट का, गुटखा का या इनहेलर्स का ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, यही आगे जाके ये ड्रग एडिक्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जब हम बात करते हैं जो नशे की तस्करी के स्रोत होते हैं, जो सोर्सेज हैं और जो सप्लाई का चेन है, उसको रोकने के लिए आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो क्या है?
0: देखिए, हमको हर केस में हमको इस बात का अध्ययन करते हैं कि वो ड्रग कहां से आया, जो जिस आदमी के पास ड्रग मिला उसको कहां से आया, फिर वो जो आदमी जिससे कहां से आया उसको कहां से आया। सो ऐसे अगर हम बहुत ज्यादा से, जो मान लो 1 किलो 2 किलो ऐसा ड्रग पकड़ा है, तो हम उसके ऊपर जाते हैं 2 लेवल 3 लेवल या 4 लेवल जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट केस है ऐसे कुछ कुछ केसेस में कि हम वहां तक पहुंच गए कि जहां पर वो ड्रग उगाया जाता है या जहां पर वो ड्रग फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, वैसे ही हम नीचे की तरफ

0: जाते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं, उसके अंदर मैं मेरे पास से ड्रग पकड़ा, तो हम हमेशा जानना चाहेंगे कि मैं किसको बेचूंगा, मेरे और कौन कस्टमर है, कंज्यूमर्स हैं, हम कौन से स्कूल कॉलेज या कौन से लोग उसको पीते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारे को जो सप्लाई करता है वो चार पांच लेवल ऊपर आदमी और चार पांच लेवल नीचे आदमी, तो 10 ऐसे लेवल्स में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखने के बाद हम ये पूरा डिसाइड कर सकते हैं या हम इस निष्कर्ष पे पक्का पहुंच सकते हैं कि भैया ये वाला ड्रग गांजा हमारे को आंध्रा और ओरिसा बॉर्डर से आ रहा है, हमारे को कोकेन लैटिन अमेरिका से नाइजीरियंस के थ्रू हमारे बेंगलोर से नहीं तो बॉम्बे से और नहीं तो दिल्ली से हमारे यहां पर आ रहा है, हमारे पास तेलंगाना में कौन सी फैक्ट्री में ड्रग तैयार होके बाहर दूसरे सिटीज को जाता है। तो ये हमेशा ये सिखलाई का विषय है कि हर केस एक नए चैलेंजेस के साथ आता है, उसमें हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देख के रोज अपना
1: उसको कनेक्ट करते हैं,
0: कनेक्ट करते हैं आगे से और ऊपर से कि कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, एंड वही चीज को डिसरप्ट करना कि अगर ये सप्लाई चेन को आप पूरा डिसरप्ट करेंगे तो ड्रग्स वो ये वाला सप्लाई चेन नहीं सप्लाई कर पाएगा।
1: जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। अगर मान लीजिए कोई आम नागरिक है जिसको ये पता चलता है कि ड्रग्स जो है उसकी तस्करी की जा रही है, उसके सोर्सेज उसको पता है, तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकता है, वो आपको अपनी जानकारी कैसे दे सकता है?
0: देखिए हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1908, तो वो टोल फ्री नंबर का जो भी मैसेज आप आता है ना वो सबसे पहले मैं ही सुनता हूँ या मैं ही वो मेरे पास ही आता है देख के।
1: मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं को फिर से एक बार बताएं अपना टोल फ्री,
0: हमारा 1908 टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर को आप फोन करते हैं तो हमको आपका फोन नहीं दिखाई देता, ठीक है?
1: जी।
0: तो इसमें आप निश्चिंत रहिए और आश्वस्त रहिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे आपका आइडेंटिटी वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है या आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक हैं, तेलंगाना को बचाना आप चाहते हैं, इंडिया को बचाना चाहते हैं, या किसी बच्चे को बचाना चाहते हैं, या आपने स्टूडेंट को बचाना चाहते हैं, तो ऐसा आपको बचाना है तो आप 1908 को जरूर फोन करके आप इंफॉर्मेशन दीजिए और वो ईगल फोर्स उसके ऊपर दुरुस्त एक्शन लेगी और आपको शायद मालूम भी पड़ जाएगा कि हमने क्या एक्शन लिया है और आपका नाम कहीं बाहर नहीं आएगा, आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। तो ये एक पूरे सब नागरिकों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर, अकेला पुलिस ये लड़ाई नहीं जीत सकता।
1: बिल्कुल सही।
0: जब तक पूरे लोग इस लड़ाई में जुड़ नहीं जाएं, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हम चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दें और उस इंफॉर्मेशन पे ईगल फोर्स एक्ट करे, अमल करे और तेलंगाना को और बच्चों को ये ड्रग्स की महामारी से बचाने का हम काम कर सके।
1: बिल्कुल सही बात बताया है आपने। जो परिवार है वो नशे की समस्या को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए किसी अभिभावक को ये पता चल ही जाता है कि उनका बच्चा जो है वो गलत संगति में आकर ड्रग्स या नशे की आदत और लत में लग चुका है, तो उसे उनको किस तरीके से सहयोग प्रदान करना चाहिए?
0: देखिए एक ड्रग्स का जो आप सोचते हैं ना, इसको एक बीमारी जैसे समझिए।
1: जी
0: ठीक है कि बीमारी है तो हमारे दोस्त पीते थे तो उससे मेरे को ये आदत लग गया, कोई बुरी संगति में पड़ गया उससे मैं, ये हमारा बच्चा खराब हो गया। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप घबराएंगे तो अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, तो हिम्मत से काम लेने की बात है। दूसरा बात है कि आप ये बात को छुपाएं या उससे भी समाधान नहीं होगा सिचुएशन का। सबसे बेस्ट आपको क्या है कि कुछ कुछ टेलटेल साइंस होते हैं कि जैसे आपका बच्चा पहले फैमिली में उठता खेलता था, बैठ उठ के बात करता था, अब एकदम सेक्लूडेड रहने लगा, उसके जो एकेडमिक के स्कोर्स गिर गए, ऐसे कुछ कुछ ऐसे सिग्नल आपको मिलेंगे कि वो थका महसूस करता है, खाना छोड़ दिया, पूरा टाइम कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहता है, ऐसे कुछ कुछ टेलटेल साइन मिलेंगे जिससे आपको शक पड़ेगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम को करने से पहले आप 1908 को भी फोन करके बोल सकते हैं कि भैया हमको केस नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को एक बार आके आप देख लें कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो हमारे को आश्वस्त कर दें, और अगर ले रहा है तो उसको डी एडिक्शन सेंटर को भेज दीजिए, हमको केस नहीं चाहिए। अगर कोई माँ बाप ऐसा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं तो हम वो बच्चे को

0: लाके आपके पास टेस्ट करके अगर वो ड्रग ले रहा है तो उसको हम डी एडिक्शन सेंटर को भेज के उसको सही रास्ते पे लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर वो फिर दोबारा ट्रीट नहीं हो पाया या फिर दोबारा इस गलत रास्ते में फिर से जाता है तो आप फिर हमसे बोलिए, हम नहीं हारने वाले, आप लड़िए इस प्रॉब्लम के साथ, आप, आपका बच्चा और हम पक्का ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने में पूरे सहमत होंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे?
1: जी
0: जो मेहनत से मशक्कत से फाइट करता है सिचुएशन को वो ही बाहर निकल पाता है।
1: जी यानी जो खुद मेहनत करता है उसकी भगवान भी सहायता करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने संदीप जी। जो मान लीजिए नशे की गिरफ्त में आए जो व्यक्ति होते हैं उनको अपराधी के बजाय जो व्यक्ति होता है उस तरीके से देखने की जरूरत है समाज को, कि वो मतलब एक व्यक्ति की तरह देखे, जैसे बीमार लोगों को देखा जाता है, ना कि मतलब इसको एक सोशल टैबू बना के चले। तो उनको उपचार और सहयोग दोनों की जरूरत होती है। तो जैसे कि अभी आपने बात की जो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने का प्रोसेस क्या क्या होता है? अभिभावक कैसे जुड़े आपसे? जैसे कि आपने अपना नंबर बताया, लेकिन इसके अलावा भी कोई और रास्ता है जिससे वो आपसे जुड़ सकते हैं या फिर अपने बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर में भेज सकते हैं?
0: देखिए, तेलंगाना में
1: जी
0: 50 के करीब डी एडिक्शन सेंटर्स हैं,
1: जी
0: जिसमें से 36 तो गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, 15 से लेके 25 बेड्स के हॉस्पिटल हैं। ठीक है, बाकी नशा मुक्त भारत अभियान में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी 16 सेंटर्स हैं, तो जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट होने में जो ड्रग्स लेता है वो 2, 3, 4, 5 दिन तक उसको बहुत तकलीफ रहती है। जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसको कि ड्रग छोड़ रहा है ना, तो बॉडी उसमें फाइट करती है कि नो नो, आप ड्रग लीजिए, और हमको उस दौरान 4, 5 दिन शुरू में लड़ के वो ड्रग नहीं लेना। वो 4, 5 दिन का पहला जो लड़ाई है, तो उसमें ये जो ड्रग एब्यूज करता है या कंज्यूमर है, जो विक्टिम है, हम उसको विक्टिम जैसे ट्रीट करते हैं, तो उसको एक डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है। तो उसको कुछ दवाई देना पड़ता है कि वो 5, 6 दिन वो ड्रग के खिलाफ उसका बॉडी अच्छा लड़ पाए। उसके बाद आउट पेशेंट जैसे वो रोज आ जाके डॉक्टर से मिलके फिर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है।
1: जी
0: और ऐसे ही 100 प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कुछ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं। वो कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती है, जो शायद हर गरीब आदमी आदमी वैसा नहीं। तो हमारा सरकारी में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उसका भी आप हेल्प लेके इसको आराम जरूर छोड़ने का कोशिश करना चाहिए सबको।
1: जी नशीले पदार्थों की जो ऑनलाइन उपलब्धता है, और ये हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया होने की वजह से जो डिजिटल माध्यमों से होने वाली तस्करी है, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या-क्या करते हैं?
0: देखिए, अब इंडिया में B2B B2C दो प्लेटफॉर्म्स हैं,
1: जी
0: तो उसमें क्या होता है कि दवाई है ना, दवाई, वो कुछ भी दवाई, जो भी ड्रग्स
1: जी
0: हैं, ड्रग्स दवाई भी हैं, ड्रग्स ड्रग्स भी हैं। तो वो दवाइयां भी B2B B2C प्लेटफॉर्म में मेरे को भी दिखेंगी, जो मैं डॉक्टर नहीं हूं उसमें दवाई दिखती है मेरे को कि ये दवाई भी मिल रही है, कुछ ये ड्रग्स भी मिलते हैं जो दवाइयां हैं, और इंडिया में ये दिखती हैं और मैं खरीद भी सकता हूं। ठीक है, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जो B2B या B2C जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कि जो आदमी वो खरीदता है वो कोई केमिस्ट की दुकान हो वाला हो तो वो ही जेन्युइन कस्टमर खरीदना, वो ही कोई डॉक्टर हो वो जो खरीद रहा है वो दवाई। अब हमारे यहां पर ये बना तो दिया B2B B2C प्लेटफॉर्म, बट उसके बाद हमारे पास ये चेकिंग नहीं है इंडिया में कि ओनली जेन्युइन पीपल आर बाइंग दी दवाइयां। अब हाँ, आपको एक छोटा बात बोलते हैं कि जैसे कुछ कुछ लोग ड्रग्स का बनाने का अपना फैक्ट्री भी लगा लेते हैं।
1: जी
0: अब वो फैक्ट्री लगाने के लिए उनको बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदना है।
1: जी
0: अब वो कोई भी आदमी जिसकी फैक्ट्री नहीं है वो क्यों इक्विपमेंट खरीद पाए? वो हमारे यहां पर वो भी खरीद सकता है। आपके पास GST नंबर, एक फर्नीचर दुकान का GSTN नंबर है।
1: जी
0: अब वो GSTN नंबर से जो ड्रग्स बनाने के रिएक्टर्स है, फ्लास्क है, हॉट बाथ है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बीकर्स है, वो खरीद सकते हैं। इंडिया में वो चेकिंग नहीं है कि ये फर्नीचर का दुकान वाला ये जो भी इक्विपमेंट जिससे ड्रग्स बना सकते हैं या केमिकल फैक्ट्री लगा सकते हैं, वो फर्नीचर का दुकान वाला क्यों खरीद पाना? नहीं
1: जी
0: खरीद पाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में बहुत कमजोर है। और उसके बाद क्या है, मैं ड्रग मंगाता हूं, तो ड्रग मंगाने से, मैंने जहां से भी ड्रग मंगाया है

0: एड्रेस को आना, तो
1: जी
0: मेरे घर के एड्रेस से आएगा तो पक्का मेरे एड्रेस को आना। पर
1: जी
0: आजकल में इसमें और फोन नंबर देके वो किसी पेड़ के नीचे बुला के ड्रग्स का या केमिकल्स का डिलीवरी लेते हैं, ये चीज भी नहीं होना। आप क्या करते हैं कि आपने एक फर्नीचर का दुकान का जीएसटीएन नंबर दिया, फर्नीचर का दुकान का एड्रेस है, अब वो डिलीवरी फर्नीचर के दुकान में नहीं होगा, वो डिलीवरी जो भी ये कुरियर ऑफिस है उसके पास से जाके आप डिलीवरी ले लें। तो चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सिस्टम्स आर वेरी पुअर इन इंडिया, एंड दी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कुछ भी उनका मायने नहीं है, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन इज उनको तोड़ना। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान, मैं कुछ भी डॉक्टर बा कुछ भी दवाई मंगाता हूं, कि इंजेक्शन मंगाता हूं, कुछ मंगाता हूं, वो मेरे घर तक आने, वो किसी पेड़ के नीचे जाके मेरे को डिलीवरी मिल जाएगा, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल
0: तो ये बात के ऊपर भी हमारे को, सरकार को एंड ऑल दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, इसमें भी पक्का ध्यान रहना कि हमारे पास रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना एंड रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ना। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ई सिगरेट्स मंगा रहे हैं, ई सिगरेट्स हर तरीके से बैंड है इंडिया में, वो ई सिगरेट्स कस्टम ऑफिस से इंडिया में आते हैं और छोटे बच्चे 8वीं के 9वीं के 10वीं के गांव में वो ई सिगरेट्स खरीद पा रहे हैं। तो बहुत ही बदकिस्मती है कि एक मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसी चीजें भी देखने में आ रही हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनने में देर है कि लागू नहीं हो पा रहे, बट एनीवे धीरे धीरे ये भी टाइट होगा। अब सरकार का, भारत सरकार का और हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा तगड़ा रिजॉल्व है कि नशा मुक्त बनाने का, देखिए 2-3 साल में अच्छा चेंजेस शायद आए।
1: जी, चीजें शायद खुल के बाहर आएंगी और मेरे ख्याल से जो आपने करी लॉ एंड एनफोर्समेंट की बात की है वो भी शुरू होगी। अब चलते चलते नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए आप खासकर पुलिस, शिक्षण संस्थाओं और परिवार और समाज, इन सबको समन्वय के साथ काम करने के लिए कैसे सुझाव देना चाहेंगे?
0: अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूं
1: जी
0: कि हमने 2024-25 और अब तक 822 स्टूडेंट्स को पकड़ा है जो ड्रग्स लेते हैं।
1: जी
0: 822 में से 600 तो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करते हैं,
1: जी
0: और 222 बच्चे हैं जो ड्रग्स लेते भी हैं और बाकी स्कूल कॉलेज के बच्चों को बेचते भी हैं। तो जैसे आपने अभी पीयर प्रेशर का बात बोला ना, कि
1: जी
0: वो ही बुरी आदतें उनको भी हैं और वो ही बुरी आदतें दूसरे बच्चों को लगा भी रहे हैं। 822 स्टूडेंट हैं अब तक 2026, 2024, 25 और 26 में, उसमें 600 बच्चे सिर्फ ड्रग्स लेते हैं और 222 बच्चे वो ड्रग्स भी ले रहे हैं और दूसरे बच्चों को बर्बाद भी कर रहे हैं।
1: जी
0: अब अगर एक पान का दुकान वाला एक 18 साल से कम बच्चे को सिगरेट बेचता है तो उसकी सजा है 7 साल, अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा है 10 साल। ये कानून में कितना कितना इसको बड़ा जघन्य अपराध माना है कि छोटे बच्चे को, एक जुवेनाइल को कोई भी नशीली पदार्थ जो बेचता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब ये स्कूल कॉलेजेस माँ बाप सबको मालूम पड़ेगा ना,
1: जी
0: तो आपको पुलिस को बताना कि आपके बच्चे के ऊपर, हम कोई पुलिस वाला इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि आपके बच्चे के ऊपर एक्शन लेगा। हम वो जो आदमी आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है, गुमराह कर रहा है, गलत रास्ते पे चलने का वो दे रहा है, उसको पकड़ के हम इस 7 साल की सजा में अंदर डालें। कि हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चे को आपने सिगरेट बेचा? पेरेंट्स, टीचर्स, पूरी समाज, उसको ये पूछना उस बच्चे से कि आपको किसने बेचा है? बच्चे को कुछ मत कहो, वो जिसने बेचा है उसको पूछो कि भैया तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे बच्चे को बर्बाद करने का? आपका आपका क्या हिम्मत है कि आपने मेरे बच्चे को सिगरेट बेचा? आपका क्या हिम्मत है आपने मेरे बच्चे को गुटखा का पैकेट दिया? ऐसा अगर हम सोसाइटी, पुलिस, टीचर्स, पेरेंट्स, अगर बच्चे के उसका गलती नहीं निकाल के उसको थोड़ा वो करके कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, और जो उसको बर्बाद कर रहा है या जो ये गलत काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना, तो इससे धीरे धीरे हम नशा मुक्त तेलंगाना या नशा मुक्त भारत की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी हाँ, नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। नशे से दूरी, जीवन से नजदीकी, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। नशे को ना कहें, दूसरों को भी जागरूक करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। डायरेक्टर

0: गल्फोस संदीप सांडिल्य जी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया और हमारे श्रोताओं तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाया और नशा मुक्त भारत के लिए एक कदम बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: श्रोताओं, ये था आज का विशेष हिंदी कार्यक्रम। आपने सुनी ईगल फोर्स तेलंगाना के डायरेक्टर श्री संदीप कुमार शांडिल्य जी के साथ एक विशेष बातचीत, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सीमा कुमारी। मित्रों, नशे को ना कहना अपने स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को हाँ कहना है, इसीलिए स्वयं जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें और नशे से दूर रहने का संकल्प ले। से नो टू ड्रग्स। इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे इसी तरंग पर, तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन

0: सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
3: सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, प्रकाश किरण कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं आध्यात्मिकता। इस विषय पर श्री शक्ति द्विवेदी से विचार।
1: आध्यात्मिकता मानव जीवन केवल

0: भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। मनुष्य की वास्तविक उन्नति तब होती है जब वह अपने बाह्य जीवन के साथ साथ अपने आंतरिक जीवन का भी विकास करता है। यही आंतरिक विकास का आध्यात्मिकता का आधार है। आध्यात्मिकता मनुष्य को आत्मज्ञान, नैतिकता, शांति, प्रेम, करुणा तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है तथा वह जीवन के उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान करता है। आध्यात्मिकता शब्द आत्मा से बना है। इसका सामान्य अर्थ है आत्मा का ज्ञान, आत्मचिंतन तथा आत्मविकास। आध्यात्मिकता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर विद्यमान दिव्य चेतना का अनुभव करता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह परम सत्य या परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यह धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, संयम, सेवा तथा नैतिक जीवन का समग्र स्वरूप है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य मनुष्य के विचारों, भावनाओं और आचरण को शुद्ध बनाना है। व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिकता वह जीवन दृष्टि है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है। आध्यात्मिकता का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप को बोध कराना है तथा उसे आत्मिक शांति और जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है। यह व्यक्ति को लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त कर प्रेम, सहिष्णुता, विवेक और सद्भाव का विकास करती है। आध्यात्मिकता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का कल्याण करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी योगदान देता है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता का उद्देश्य मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना तथा आत्मा और परमात्मा के संबंध का अनुभव कराना है। यह व्यक्ति को बाह्य जगत से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखती बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों, मानव सेवा की ओर प्रेरित करती है। यह सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। इससे जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव की कमी आती है तथा सामाजिक एकता मजबूत होती है और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित समाज में हिंसा, द्वेष और संघर्ष कम होते हैं। प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है। आध्यात्मिकता समाज के कमजोर, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में प्रेरणा देती है। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवता का विकास होता है। यह भारतीय संस्कृति और नैतिक परंपरा को सुदृढ़ बनाती है। यह समाज में संस्कारवान एवं मूल्यनिष्ठ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भ्रष्टाचार, हिंसा, नशाखोरी, अपराध, स्वार्थ और नैतिक पतन जैसी समस्याओं के समाधान में आध्यात्मिकता प्रभावी माध्यम हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर बल देती है। आज का समाज भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और तीव्र प्रतिस्पर्धा से प्रभावित है। इसके कारण तनाव, अकेलापन, नैतिक पतन और सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। ऐसे समय में आध्यात्मिकता जीवन में संतुलन, आत्मसंतोष, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करती है। यह व्यक्ति को स्वयं के साथ साथ समाज और प्रकृति के भी संवेदनशील बनाती है। आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान का भी प्रभावी माध्यम है। यह व्यक्ति को आत्मज्ञान, नैतिकता और मानवता की ओर प्रेरित करती है तथा समाज में शांति, सद्भाव, सहयोग और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए ताकि एक आदर्श, नैतिक और समरस समाज का निर्माण हो सके। भारतीय संस्कृति का आधार ही आध्यात्मिकता रहा है। महर्षि वेदव्यास, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य स्वामी, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने आध्यात्मिक मूल्यों को समाज सुधार, मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता, नैतिकता और विश्व बंधुत्व की प्रेरणा स्रोत है। आध्यात्मिकता व्यक्ति और समाज दोनों का सर्वांगीण विकास का आधार है। यह मनुष्य को आत्मज्ञान, आत्मसंयम, नैतिकता, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाती है। इसके माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव, समानता, सहयोग और मानवता की स्थापना संभव है। शिक्षा, परिवार और सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश कर एक आदर्श, नैतिक, समरस और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है।
1: श्रोताओं, प्रकाश किरण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे आध्यात्मिकता, इस विषय पर श्री शक्ति द्विवेदी से विचार।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक परिचर्चा। विषय है कामकाजी महिलाएं और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियां। इस परिचर्चा में भाग ले रही हैं श्रीमती सुनीता लूला और श्रीमती आशा मिश्रा। इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे बदलते समाज और परिवार की असली तस्वीर को दर्शाता है, कामकाजी महिलाएं और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियां। आज महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उद्योग, विज्ञान और मीडिया जैसे हर क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना रही हैं। लेकिन इस सफलता के साथ उनके सामने समय प्रबंधन, कार्यस्थल का दबाव, परिवार और करियर के बीच संतुलन की कई बड़ी चुनौतियां भी है। इसी विषय पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती सुनीता लूला जी और श्रीमती आशा मिश्रा जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। कि मैं डॉक्टर आशा मिश्रा एक संपादक हूँ, लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत कविताएं कहानियाँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं सादर नमन करती हूँ।
2: धन्यवाद जी। मैं सुनीता लूला हूँ, मैं सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापिका हूँ। जीवन के 36 वर्ष मैंने शिक्षण को दिए और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सीधा साहित्य की दुनिया में चली गई, जहाँ कविताएं करना, कविताएं पढ़ना, संपादन करना, मेरा अपना प्रकाशन है, अपनी संस्था है, तो लगातार समाज के साथ जुड़े रहने का ये एक बहुत अच्छा जरिया लगता है मुझे।
0: सुनीता जी, चर्चा की शुरुआत सीधे आपसे करते हैं। एक कामकाजी महिला होने के नाते रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहली और बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है?
2: जिम्मेदारी लगती थी, चुनौती तो मुझे कोई नहीं लगी। जब मैं छोटी उम्र में थी तभी से मैं सोचती थी कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। विवाह के पहले भी मैं काम करती थी, उस जमाने में जब बहुत ज्यादा लड़कियां बाहर नहीं जाती थी काम करने के लिए। लेकिन मैंने अपने जीवन का रास्ता तय कर लिया था। विवाह होने के पश्चात बच्चे हुए, फिर जब बच्चे बड़े होते उनके प्रति जिम्मेदारियां ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे शिक्षण की ओर ध्यान दिया और स्कूल वगैरह में मैंने जाकर काम किया, तो मुझे थोड़ा सा शुरुआत में संतुलन बिठाना कठिन लग रहा था
0: जी।
2: क्योंकि पहले आदत थी कि सारा दिन हम घर पर हैं, अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, पर वही काम हमें बाद में भी करने हैं। उसमें चुनौती अगर कहा जाए तो यही था कि घर को और बच्चों को पूरी देखभाल, पूरा उनका संरक्षण, कामकाज इत्यादि देखते हुए अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई बातों को भी देखना था मुझे। धीरे धीरे उसमें मैं सेट हो गई, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा लगती थी। अब ज्यादा जागरूक होना पड़ता था कि अपना समय मैं कैसे बचा सकती हूँ, कैसे कम समय में सारे काम कर सकती हूँ।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशा जी, यहाँ मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि समाज में आज भी परिवार की जिम्मेदारियों को केवल महिला की जिम्मेदारी मानने की पारंपरिक सोच बनी हुई है? क्या इसे बदलने की सख्त जरूरत है?
1: बिल्कुल, महिलाओं से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। एक तो है ना कि महिलाएं सर्जक हैं, सृजन उनका कार्य है, और एक उनके स्वभाव में है कि सब कुछ संभाल लेने की आदत है, बनी हुई है शुरुआत से। शायद हमको बचपन से ही हम देखते आए हैं, हमने देखा है अपनी माताओं को, अपने सब परिवार में सबको देखा है कि कैसे सबको खुश रखना है। हाल फिलहाल मैं एक सिनेमा देख रही थी, उसमें जो लड़की होती है उसको किस तरह से शोषण नहीं कहेंगे, उस साइलेंट शोषण आप मान लीजिए, जो भी बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो कुछ खराब कर रही है, उसका शोषण हो रहा है, लेकिन वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक सबको खुश करने में लगी हुई है। ससुर है, ससुर बड़ा अच्छे से बोलते हैं कि उनकी सास चली जाती है बाहर, तो बोलते हैं बेटा चटनी तो बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन जो आपकी सासू माँ बनाती थी सिलबट्टे पे वो वाली स्वाद नहीं है।
0: जी जी।
1: और वो बेचारी सोचती है कि पापा को अच्छा नहीं लग रहा तो चलो सिलबट्टे पे ही कर लेते हैं, वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। और वो चीज हमारे अंदर है, जब हमें जब समय आता है, एक टाइम पर लगता है कि फिर हमने क्या किया, जब उन चीजों की कद्र नहीं होती है ना, तब स्त्रियों को लगने, तब उनको एहसास होता है कि हमको क्या मिल रहा है। और शायद यही कारण था, उनकी कद्र नहीं होने की कारण थी या जो भी था, तब उन्होंने सोचा है कि हमको कुछ और करना है, हमारी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और चुनौतियां बनती ही रह गई, वो अपेक्षाएं कभी कम नहीं हुई। औरतें काम करती हैं बाहर, सुनीता जी ने कहा कि अकेले परिवार में तो एक अलग जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को भी संभालना है, घर को भी,

0: संभालना है, पति को भी देखना है और वर्क लाइफ बैलेंस करना है
1: जी।
0: वहां पे ऑफिस में भी तनाव कम नहीं होते हैं, वो सारा कुछ करके उसके बाद आप घर पे आते हो, उसके बाद घर पे देखते हो कि क्या क्या काम सब परे हुए हैं और बच्चे बच्चे हमारे सफर कर रहे हैं, उनको एक एक गिल्ट की भावना आती है कि हम बच्चों को उतना नहीं देख पा रहे हैं जितना हमको देखना चाहिए।
1: जी
0: तो और सबकी अपेक्षाएं होती, अगर बच्चे खराब निकल गए तो पहले आता है कि अरे माँ ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो तो अपने काम में लगी रही, उसके पास समय कितना था। तो ये सब चुनौतियां तो है ही
1: जी। बहुत पते की बात कही आशा जी आपने। सुनीता जी, जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो बच्चों की देखभाल और करियर के बीच संतुलन सबसे नाजुक मोड़ होता है, खासतौर पर मातृत्व के बाद नौकरी जारी रखने में कौन सी व्यवहारिक दिक्कतें आती है?
2: दिक्कतें तो नहीं आती हैं, लेकिन अपने आप को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। जब हम काम पर जाते हैं, मैं टीचर बनी तो टीचर बनने का मेरा एक मकसद यही था कि मेरे बच्चे भी तो स्कूल जाएंगे, वो स्कूल जाएंगे मैं भी स्कूल जाऊंगी, भले ही दूसरा स्कूल हो, वो जब तक वापस आएंगे तब तक मैं भी आ जाऊंगी। तो मेरा समय मैं बच्चों को नहीं दे पाऊंगी, वैसा होगा ही नहीं। तो घर आने के बाद मैं बच्चों को खिलाना पिलाना, नाश्ता देना और बाकी शाम के दूसरे काम करना वो सब करती थी, उनकी पढ़ाई को देख लेती थी
1: जी।
2: तो मुझे ये संतुलन बनाना होता था। ये चुनौती जैसा कभी नहीं लगा, लेकिन चुनौती तब लगती थी अगर मुझे स्कूल जाना है और मेरा बच्चा बीमार है और वो घर में है
1: जी।
2: पर ऐसे चुनौती के मौके कभी कभी ही आते हैं तो तब हम छुट्टी ले लेते हैं, पर घर बैठ के भी स्कूल का काम अपना जो भी होता है करते हैं। मुझे याद है कि मैं क्योंकि बहुत जल्दी प्रिंसिपल बन गई थी तो फोन पर मुझे मेरा काम होता था या ऑफिस से कोई रजिस्टर लेके आ जाता था तो मैं वो काम कर लेती थी, क्योंकि वो कंप्यूटर वाला जमाना नहीं था।
1: जी।
2: तो इस प्रकार से संतुलन तो बना रहा, लेकिन अपने लिए आराम के पल निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है
1: जी।
2: हम थके हुए होते हैं फिर भी हमें बच्चे को देखना होता है, चाय बनानी होती है, खाना बनाना होता है, बच्चे का होमवर्क होता है, उसके स्कूल की क्या शिकायत है या घर में कोई मेहमान आए हुए हैं बाहर से
1: जी।
2: तो उन सब के बीच जैसे हवा होती है, मुझे लगता है महिला का रोल एक हवा की तरह है, वो कोने कोने में चली जाती है, पत्तों के बीच से झाड़ों के बीच से गुजर जाती है लेकिन हर जगह वो भर देती है। उसी प्रकार महिला है, पति को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती है, तो जो एक ऑलराउंड काम होता है वो महिला का होता है और हम कर लेते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया इस तरीके से है। मैंने कोई पुरुष नहीं देखा जो पूरे काम कर सकता हो, महिला हजारों देखी है जो सब कुछ करती है
1: जी। पर आजकल की महिलाओं में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप?
2: देखिए वो स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको ये लगता हो कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं
1: जी,
2: तो वो स्ट्रेस तो हमें भी होता था लेकिन हम उसको भूल जाते थे और काम में, और धीरे धीरे करते करते हमारी व्यक्तिगत क्षमताएं भी तो बढ़ जाती है। मुझे याद है विवाह के काफी सालों बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हुए थे और मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो शुरुआत में मुझे दिक्कतें होती थी, मैं काफी टेंशन में आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई कि इस प्रकार से ये करना है, उस प्रकार से ये करना है और कर लेती थी मैं। और मुझे ये भी था कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं कि मेरी इनकम मेरे बच्चों के लिए मेरे घर के लिए भी आवश्यक है
1: जी,
2: तो कुछ ना कुछ तो कष्ट हमें उठाना पड़ेगा। मुझे वो इतना अच्छा लगता था कि मैं उसको कष्ट नहीं कहूंगी क्योंकि मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, तो ये चुनौतियां आएंगी इनकी मुझे जानकारी थी तो मैंने उन चुनौतियों को भी उनका भी आनंद लिया
1: जी।
2: देखिए आजकल की लेडीज किस काम में है ये उस पर निर्भर करता है, जो ऑफिसों में काम करती हैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाती हैं, शाम को आते आते उनको 7-8-9 भी बज जाते हैं
1: जी,
2: उनकी परिस्थिति हमसे अलग होती है
1: जी।
2: वो लोग या तो उनको घर पे कोई हेल्पर हो या कोई सगा संबंधी हो, माँ हो, सास हो वगैरह हो
1: जी,
2: तो वो लोग करते हैं पर उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है और जो उनकी एक दबाव, एक मानसिक दबाव होता है वो हमसे ज्यादा होता है
1: जी। आशा जी, आजकल वर्क फ्रॉम होम या टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा सहारा माना जाता है, पर क्या ये वाकई महिलाओं के लिए अवसर है या इससे काम का दबाव और बढ़ जाता है?
0: वर्क फ्रॉम होम जितना है कि घर से काम करते हैं तो महिलाएं घर में होती है, देख लेती है, लेकिन उससे कुछ लगता है कि ठीक है, बच्चे भी हैं, वो भी हैं, बाकी का काम सब भी है, ब्रेक होगा उसमें हम देख लेंगे, बाकी का काम कर लेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता है।
1: जी जी
0: क्योंकि

0: मीटिंग में लगी होती हैं, सुबह से शाम तक कभी कभी मीटिंग होती है और कमरा बंद करके रखना पड़ता है
1: जी,
0: उनको नहीं पता चलता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तब तो उनको और दोहरी दबाव हो जाती है
1: जी।
0: फिर घर वालों को लगता है कि घर में बैठी हुई है तो देख सकती है ना, थोड़ा निकल के ये काम भी कर सकती है, बच्चों के ऊपर उनको भी रहता है कि मम्मा घर में ही तो है, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि वो निकल नहीं सकती, अपना मीटिंग छोड़ नहीं सकती है, अगर बाहर की आवाज आती है तो उनको वो भी ध्यान देना होता है कि बाहर से कहीं कुछ आवाज ना आ जाए,
1: जी
0: और वो तब और खराब लगता है उनको कि हम घर में हैं, काम कर रहे हैं, ना मेरा काम ठीक से हो रहा है ना मैं अपना घर देख रही हूँ। टेक्नोलॉजी कहीं कहीं सही है कि एक चीज अच्छाई है कि घर एटलीस्ट घर पे तो है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है,
1: जी
0: आपके जो समय बर्बाद हो रहे थे आने में जाने में वो समय बच रहा है,
1: बच रहा है।
0: हाँ, लेकिन इससे कुछ बहुत कुछ सिद्ध नहीं हो पाता है, बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाता है, तो उनको समय देना ही है, काम उतना ही करना है, चुनौतियां उतनी ही है। ऑफिस में जब काम करती है महिलाएं तो जैसा मैडम ने कहा कि आजकल की महिलाओं को कॉरपोरेट लाइफ है
1: जी
0: इस समय, वहां पे एक अलग तरह की दवा, वहां पे भी उनकी अपनी पहचान बनानी होती है,
1: जी
0: उनको लगता है कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमको हमारी पहचान, हमको प्रमोशन मिले समय से समय तक, लेकिन जब जब माँ बनती है स्त्री उसके बाद जो उनकी चुनौतियां होती है, अब नहीं जा सकती है, टाइम उनके पास उतना नहीं होता है कि अपना समय ऑफिस में भी उतना बिताए, काम करे, छुट्टी लेंगी ही, उनको घर में रहना पड़ता है
1: जी
0: बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है तो छोड़ के नहीं जाएंगी, और वो 2 साल तो निकल जाते हैं, 1 से 2 साल निकल जाते हैं, उस बीच में उनको लगता है ऑफिस में बहुत बदलाव हो गए होते हैं, उनका काम के घंटे कम हो जाते हैं तब, पर
1: जी
0: लगता है इसमें उतनी क्षमता नहीं, उनको प्रमोशन भी नहीं मिल पाता है जितना उनको चाहिए होता है, जितनी उनकी आवश्यकता होती है और जितने के लिए वो सक्षम है,
1: जी
0: तो ये सब कठिनाइयां हैं। टेक्नोलॉजी है ठीक है, घर में है, घर से काम कर सकते हैं, बहुत सारा चीज प्रेजेंट करने का है तो घर से ही कर लेते हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ सुधार महिलाओं के जीवन में नहीं हो पा रहा है,
1: जी
0: तो भी उनको कठिनाइयां झेलनी ही पड़ रही है।
1: बिल्कुल, अपनी सेहत और खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करके कोई भी लंबी रेस नहीं दौड़ सकता।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल,
1: जी सुनीता जी, आपके अनुभव से पूछना चाहूंगी, घर के कामों में पुरुषों या पति की भागीदारी एक महिला का बोझ कितना हल्का कर सकती है?
2: काफी कुछ हल्का कर सकते हैं, लेकिन जिस पीढ़ी से मैं आती हूँ
1: जी
2: तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि घर का काम माने महिलाएं ही करें, चाहे आप काम कर रहे हो, पुरुष उठकर चाय भी नहीं बनाएगा। मुझे याद है मैं स्कूल से आती थी, स्कूल के बाद कभी मीटिंग होती थी एजुकेशन कमेटी के साथ,
1: जी
2: वापस आती थी और मेरे पति अगर घर पर होते थे तो वो घड़ी देखते थे और मुझे बोलते थे चाय बनाओगी। मैं कभी कभी ये सोचती थी अगर मैं थक कर आई हूं तो क्या मेरा पति चाय नहीं बना सकता। तो ये पीढ़ियों में ये फर्क तब था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ अभी जो यंग पीढ़ी है, जो अभी मिडिल एज में है, 40-45 के बीच में है, मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, तो वो लोग अगर उनकी पत्नी देर से आती है या तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं या किचन में चले जाते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी कठिनाइयों को समझ के एटलीस्ट किचन में खड़े होकर उनसे बातचीत तो करते हैं,
1: जी
2: तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का फर्क है। तो आज के जो पुरुष वर्ग है वो ये समझते हैं कि उनको भी हाथ बटाना है, क्योंकि महिला घर की आर्थिक स्थिति में अगर हाथ बटा रही है तो घर की जो दूसरी चीजें हैं वहां पुरुषों को भी हाथ बटाना चाहिए।
1: जी
2: काफी लोग कर पाते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाते।
1: जी आशा जी, अंत में हमारी उन युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ साथ एक संतुलन जीवन जीना चाहती है?
0: एक बैलेंस की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम किस तरह से कर पा, कितना हमसे हो रहा है,
1: जी
0: हमारे ऊपर हमारी क्षमता क्या है, जस्ट अपने आप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए अपना दिन रात चैन नहीं खराब करनी चाहिए। घर को भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी बाहर आवश्यकता होती है, हमारी परिवार को भी इतनी ही जरूरत होती है, लेकिन आवश्यकता तब पड़ जाती है जैसा मैडम ने कहा कि कुछ कमाई करेंगे तो घर चलेगा, दोनों मिलके हाथ बटाएंगे, तो ऐसे में होता है कि पुरुषों को भी चाहिए कि घर में भी हाथ बटाना चाहिए। तो मैडम ने कहा कि वो सही बात है कि आजकल लड़के कर रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो होता है कि अगर लड़कियां स्त्री पत्नी नौकरी कर रही है तो पति का हमेशा होता है तुम क्या ही कर रही हो, विशेषकर अगर टीचर है है तो पति हमेशा बोलता है कि क्या तुमको तो हमेशा छुट्टी ही रहती है, कोई बैंक में काम कर रही है तो पति आके बोलेगा तुमको तो हमेशा छुट्टी रहती, तुम काम ही क्या करती हो, इतने काम के लिए तुमको फ्री में पैसे मिल रहे हैं और हम इतना काम करते हैं।

0: तो ये सब चीजें हैं, तो स्त्री को ये सब चीजों को ध्यान नहीं देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या ज्यादा जरूरी है। उनका अपना सेहत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका घर है,
1: जी
0: जितना जितनी उनकी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। तो सब उनका अपना खुद की पहचान, जैसे मैंने तो बहुत सारी मेरी दोस्त सब हैं, उनको मैंने देखा है कि जब नौकरी करती हैं सब, और बोलती कहीं भी जाना हो तो नहीं, एक ही दिन तो संडे मिलता है, मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा काम कैसे होगा,
1: जी
0: और खुद के लिए अपने लिए कुछ नहीं कर

0: भी जाना हो तो नहीं, एक ही दिन तो संडे मिलता है, मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा काम कैसे होगा।
1: जी
0: और वो खुद के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है, या तो अपने नौकरी के लिए करती है, परिवार के लिए करती है, खुद के लिए कुछ नहीं करती।
1: तो अपने लिए समय देना चाहिए
0: समय देना चाहिए। तो वही
1: जी
0: एक सोचना है कि खुद के लिए भी जिए।
1: जी
0: बच्चा है, घर है, वो सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे रगों में बसा हुआ है,
1: जिम्मेदारी
0: हम जिम्मेदारी बसी हुई, और हम भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो हम जानबूझ के चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं वो चीज।
1: जी
0: लेकिन कैसे सबसे मिलते जुलते कैसे अपने आप के लिए भी समय निकालना है, ताकि एक दिन हम ऐसे ही बाहर निकले और पता चले कि हम क्या किए, हम कहीं के नहीं रहे।
1: जी
0: हम जिसने घर में हमने इतना समय दिया, न घर हमारा हुआ, और जिस ऑफिस के लिए हम दौड़ भाग करते रहे, वहां पे भी हमारे हमारे लिए कुछ विशेष नहीं है।
1: जी
0: तो इसके लिए खुद के लिए सोचना बहुत जरूरी है।
1: जी सुनीता जी, आप इस पर क्या कहेंगी?
2: मैं इनकी काफी कुछ बातों से सहमत हूँ कि संतुलन का मतलब कि दो तरह की चीजों को आगे पीछे करने के बीच में जो दूरी होती है, मैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरी इच्छाएं, मेरे अपने व्यक्तिगत सपने,
1: जी
2: वो फोकल पॉइंट, वो भी फोकल पॉइंट होना चाहिए। और मैंने या मेरे दूसरे टीचर्स वगैरह से जिनसे हम आपस में बात करते थे, उन सब ने यही किया कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालते थे,
1: जी
2: नहीं तो हम कहीं खो जाते, कहीं के नहीं रह पाते। आज की जो पीढ़ी है, जो अब ऊपर आ रही है, इसमें इनकी सोच विचार में फर्क है, क्योंकि जब मैं तुलना इसलिए कर रही हूं कि फर्क हमें दिखे। हमारी पीढ़ी को, मेरी उम्र के लड़कियों को पता था पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद थोड़े बड़े हुए शादी हो जाएगी, घर परिवार जाके संभालना है, जीवन का स्त्रियों के लिए केवल एक ही लक्ष्य माना जाता था। हालांकि मेरी सोच अलग थी, मुझे मालूम था मुझे ये भी करना है, लेकिन मुझे वो भी करना है जो मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने लड़ाई करी, पढ़ाई करी आगे तक। लेकिन आज की जो लड़कियां हैं उनको ये बात कम समझ में आती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने होते हुए देखा है कि वो बाहर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, घर की चीजों पर नहीं। उनका कमरा बेतरतीब पड़ा रहेगा, खाना पकाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों की देखभाल करने में, जबकि वो तो हमारी धरती है, वो हमारा ग्राउंड लेवल है महिलाओं का। अगर हम वो नहीं कर पाते, आकाश में उड़ने से कुछ नहीं होगा, आकाश से उड़ के नीचे आपको जमीन पर आना होगा। तो आज की जो बहुत यंग पीढ़ी है, उनमें ये कमी मैं देखती हूँ कहीं कहीं। माने जितना हम कर पाते थे करते थे, वो नहीं करती हैं तो उसके लिए वो गलत है, हम सही थे, मैं ये भी नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे अभी लगता है कि उनको थोड़ा ये ध्यान देना होगा। और परिवार को एक संतुलन जो महिला बना सकती है, वो अकेला पुरुष नहीं बना सकता। तो कुछ भी कह लो, कितने भी पुरानी पीढ़ी हो, कितनी भी नई पीढ़ी हो, जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो महिलाओं की ही बनती है, कोई भी पीढ़ी हो।
1: जी,
0: मैं एक बात बोलना चाह रही थी, हमारा काम है बच्चों का परवरिश करना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि पुरुष सहभागिता नहीं निभाता है, घर का काम नहीं करता, वो भी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं।
1: जी,
0: सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ये लगता है, अगर भविष्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार लानी है, तो हमको हमारे बच्चों को, विशेषकर लड़कों को, सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपका काम उतना ही है जितना मेरा काम है।
1: जी,
0: ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी आएगी तो सारा काम करेगी और आपको हर चीज पका के देगी, आपका काम सिर्फ ऑफिस का है, तो आपको भी उतना ही हाथ बटाना है जितना वो करी आप भी करो। शायद हम अभी से, अभी का जनरेशन अगर अपने बच्चों को सिखाने लगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो सकता है जो अगली पीढ़ी आएगी उनको सभी को समझ में आ जाएगा कि लड़का लड़की बराबर है,
1: बराबर।
0: उनके काम मेरे काम सबके बराबर है, जितना वो करती है उतना हमको भी करना है, तो शायद ये दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
1: जी,
0: तो ये सोचना चाहिए, स्त्रियों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं।
2: तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात ये हुई कि संतुलन बनाना है।
1: जी हाँ,
2: तो पहले हमारे समय में ऐसा होता था, सर्टेन काम लड़के करते थे, लड़कियां नहीं करती थी, और कुछ काम होते थे लड़कियों को ही दिए जाते थे, लड़कियों को नहीं।
1: जी,
2: लेकिन मैंने अपने माता पिता से ये सवाल किया था, शाम होने के बाद हमें, आप हमें घर से बाहर नहीं जाने देते हो, आगे जाकर जब हमको बाहर जाना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? और लड़का जो आज खाली बाहर घूमता है, काम करता है, मान लो जिम्मेदार है वो भी, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो क्या वो घर में काम नहीं करना चाहेगा? मैंने देखा था, मेरी माँ जब बीमार होती थी और जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे पिताजी चाय वगैरह बना लेते थे, बाहर से कुछ खाने पीने का ले आते थे।

0: थे तो जिम्मेदारी तो निभाते थे अलग अलग रूपों में। तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास दोनों में होना बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है,
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: जरूरी है। और वो संतुलन का मतलब यही है, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहेगा, फिर उसको बीच में लाना है। और ये एक सतत प्रक्रिया है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि अब हमारे सारे काम हो गए, हम संतुलन ले आए हैं। संतुलन एक लगातार चलते रहने वाला युद्ध है।
1: जी, कितनी सुंदर और विचारणीय बातचीत रही आज की। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से यही बात खुलकर सामने आती है कि कामकाजी महिला की जिम्मेदारियां केवल उसकी अपनी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, कार्यस्थल और समाज, जो ये तीनों मिलकर सहयोग करेंगे तभी महिला अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना पाएंगी। महिलाओं का सहयोग, सम्मान और समान अवसर देना केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम नहीं, बल्कि एक मजबूत परिवार और सशक्त समाज की नींव है। आशा जी और सुनीता जी, आज हमारे साथ जुड़ने और इतनी प्रेरणादायक चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सबका भी धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे परिचर्चा, विषय था कामकाजी महिलाएं और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियां। परिचर्चा में भाग ले रही थी श्रीमती सुनीता लूला और श्रीमती आशा मिश्रा। इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया।

इसके साथ ही आज का ये हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसीलिए वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता है, इसका मतलब है ऐसा शख्स है जिसका कोई दुश्मन न हो। जनाब अमित शाह आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बहरा के मुकाम पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे।
1: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 1.5 करोड़ से अधिक लागत से अटल जी के व्यक्तित्व जैसी भव्य प्रतिमा यहाँ पर प्रस्तापित की है। इसके लिए काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ।
0: दिल्ली में अमृत उद्यान को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला है और इसमें शाम 5 बजे तक जाने की इजाज़त है। अमृत उद्यान रखरखाव के लिए हर पीर को बंद रहेगा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर फिर से हवा के कम दबाव का हल्का बनने से शुमाली उड़ीसा में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने वहां कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। बैतरनी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ी बलिंगा नदी का पानी कई इलाकों में भर गया है। इसके मद्देनज़र 6 जिलों बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा में सख्त चौकसी बरती जा रही है। 500 से ज़्यादा गांवों में तकरीबन 2,70,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 95,000 से ज़्यादा अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत कल से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ख्वातीन के सिंगल्स में PV सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर बांग्लादेश ने पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया पर उसकी दूसरी जीत है। खास खबरें एक बार फिर। इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नीट 2026 के 84 मजामीन के लिए इम्तिहानात का इनेकाद करने से मुतालिक एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 के 84 मजामीन के लिए उबूरी आंसर कीज जारी कर दी हैं। एतराजात दाखिल करने की सहूलत मंगल तक दस्तियाब रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तिहान में बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा ने वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of former PM Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on his death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And now the news in detail. The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for

0: tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This will be only the second time India hosts the tournament after the 2009 edition. Indian players have won at least one medal at every World Championships since 2011. The country has claimed 14 medals across the last 11 editions. A report.
1: PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. The former world champion is targeting a sixth World Championships medal after winning the Japan Open earlier this year. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है. एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र के

0: प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने

0: दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को

0: राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीसा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया। इस ज़िमन में उन्होंने एक ख़त वज़ीर आज़म को लिखा। इस ख़त में उन्होंने SC ST BC तबके के मानंद ही OBC SE BC तबके को खसूसी ज़ुमरे की मरदमशुमारी के सवालिया पर्चे में शामिल करने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के ममलिकती वज़ीर रविंदर जायसवाल ने आज लोक भवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर बंडला गणेश की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद दी। इसके अलावा गवर्नर ने कोमपल्ली में डॉक्टर बी कल्याण चक्रवर्ती के फर्जन की शादी की तकरीब में शिरकत की और नए जोड़े को मुबारकबाद दी। हैदराबाद के सनत नगर में तामीर किए गए डॉक्टर MCR टिम्स का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर को इफ्तिताह करेंगे। कॉरपोरेट हॉस्पिटलों के तर्ज पर तामीर किए गए इस हॉस्पिटल में 1082 बिस्तर हैं, जिनमें 300 ICU बिस्तर शामिल हैं। इस हॉस्पिटल में 31 मेजर ऑपरेशन थिएटरों के अलावा जाँच के नमूनों की फौरी मुंतकली के लिए AI पर मबनी न्यूमाटिक टैब का निज़ाम मुल्क में पहली बार हुकूमत की जानिब से कायम किया गया है। आज़ा की तब्दीली आंकोलॉजी के अलावा दीगर 6 शोबों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तौर पर इसको तरक्की दी गई है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के सनत नगर में टिम्स हॉस्पिटल के इफ्तिताह के लिए वसीत तर इंतजाम करने अहदेदारों को हिदायत दी। पीर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों होने वाले इस इफ्तिताह के ज़िमन में उन्होंने इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने ट्रैफिक, पार्किंग, सिक्योरिटी, पीने के पानी, बरकी की सरबराही और दीगर अमूर पर महकमे सेहत, पुलिस और JHMC के अहदेदारों के साथ जायज़ा अजलास भी मुनक़द किया। हैदराबाद शहर को आलूदगी से पाक अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को तरक्की देने के मकसद के तहत ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक तब्दीली की स्कीम को रियासती हुकूमत ने क़तियत दी है। इस स्कीम के तहत क्यूर के हदूद में पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने या फिर नए इलेक्ट्रिक ऑटोओं के ज़रिए इसको भर्ती करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ ले जाना इस स्कीम का अहम मकसद है। इस स्कीम के ज़रिए तेलंगाना में ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक की तब्दीली के ज़रिए 18,766 लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें डीजल से चलने वाले ऑटो 11,254 हैं, जबकि पेट्रोल से चलने वाले ऑटो 7,512 हैं। मौजूदा ऑटो को इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटमेंट या नई इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीदारी के लिए 1,50,000 रुपये हुकूमत माली इमदाद फरहम करेगी। इसके लिए अब तक 200 करोड़ रुपयों का बजट मुख्तस किया गया है। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को माशी तौर पर तरक्की देने के इकदाम कर रही है। नलगुंडा के करीब गंदमवारी गुड़म में 3,50,00,000 की लागत से नए कायम किए गए नीलागिरी महिला शक्ति पेट्रोल पंप का उन्होंने इफ्तिताह किया और सुपर मार्केट की तामीर का संग बुनियाद रखा। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन तजारती मैदान में आगे बढ़ते हुए राइस मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट, पेट्रोल पम्प्स और दीगर को चलाते हुए माशी तौर पर तरक्की करना ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मकसद है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के करीब सुपर मार्केट के अलावा कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट का बिजनेस भी किया जा सकता है। मरकजी वज़ीर बंडी संजय ने कहा कि इख्तदार से दूरी के बाद BRS बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर BRS से सवाल करते हुए कहा कि रियासत में 10 साल तक हुक्मरानी करने वाली BRS की तनकीदें काबिल अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बेहतर कॉलेजेस न होने का BRS के कायदीन दावा कर रहे हैं। बंडी संजय ने BRS से सवाल किया कि वह अपने 10 साल हुक्मरानी में क्या इकदाम किए हैं वाज़ेह करें। उन्होंने सवाल किया कि BRS की हुकूमत में अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम क्यों अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि BRS की हुकूमत में कितने पेपर लीक हुए हैं इसकी भी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने वक्त पर फीस रेम्बर्समेंट के बकायाजात को भी जारी ना करने का BRS पर इल्जाम लगाया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आज हैदराबाद, जगतियाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, नारायणपेट, निर्मल, रंगारेड्डी और दीगर अजला में हल्की बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया।
ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد سٹیزن فورم کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک سخن

आफती प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जुप्पली कृष्ण राव ने कहा कि बतकम्मा, बोनालू, सम्मक्का, सारालम्मा जात्रा जैसे त्यौहार तेलंगाना अवाम के जिंदगियों से जुड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेया ने हैदराबाद के रामनगर पर वाक़ अपनी रिहाइश गाह में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरअंदेश वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बताए हुए तालीमात आने वाली नस्लों के लिए मशले राह साबित होंगे। अब खबरें ख़त्म हुईं।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार

भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गॉल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: చిత్రసీమ సినీ గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8:40 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార సంధ్య ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया. भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया. 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार. पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट. यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत. महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की. और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू. पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे. अब

0: समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economies and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UG

0: सी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन

0: से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for an inauguration.

0: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी ये प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने

0: प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए।
1: पुत्री,
0: आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
1: पुत्री दुर्गा।
2: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
2: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
2: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है, उसे बंदी बना लीजिए।
2: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वह 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी,
1: महानता,
2: बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी

0: और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना, लेकिन
0: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
0: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
2: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
0: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
0: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
3: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
4: जहां पना का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
4: जहां पना, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बास बहादुर को मात दी है।
0: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
4: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
0: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
4: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रहे हैं।
0: भला वो किसके दम पर?
4: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
0: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीचा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
0: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। और कहा है?

0: की अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
0: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
0: जो हुक्म महारानी साहिबा।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
2: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
2: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
3: जो आज्ञा महारानी।
0: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
0: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो हुक्म महारानी।

0: Ja.
1: क्या है ये?
0: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धोनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
1: पिंजना, वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: बिनी चुरत। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
0: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
0: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: खैर, अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो!
4: दुर्गावती का हाथी बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। कुछ कुशल तीरंदाजों को ऊंचाई पर भेजो और नीचे से गोला

0: Maria, por favor, me quita más barranique.
1: Maria, no. Era un crimen alineo.
2: Sánico, queda apanado. Maranico, solo que el palqui me las cadur que te las leyao. Ya.
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
3: नहीं महारानी,
1: इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
3: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
2: महारानी,
1: कौन?
2: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए, वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
2: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: चलिए, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
2: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी,
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी कड़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो।
2: महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती। धन्य है।

0: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to Gat in Rupak Tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani.
2: The composition is set to Kaharwa Taal.

गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रीतम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय अशीत जाना। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12

0: बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
1: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. The National Testing Agency NTA today announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The NTA said the English paper will be held on the 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1, while the commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in